10:30 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, ये किसी गाने के बोल हो सकते हैं और ये किसी के जज्बात भी हो सकते हैं और ये किसी फिल्म का नाम भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो आपका नाम ये है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान, पूजा परिहार और पूरा छीपा परिवार, नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, और इनकी फिल्म का गाना आएगा जरूर। ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनसुया, पवन राजे, और गांव टोरवाल जिला नवांशहर पंजाब से गगनदीप, त्रिपतार और डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका, वाणी, और उसके बाद हम हैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ दिल का मेलबॉक्स में।

तो आपसे यही कहते हैं हर बार कि देखिए प्यार को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, प्यार कीजिए, प्यार से भरे रहिए, तो फिर सारी की सारी जो चीजें हैं ना जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, फिर उन पे हमें हंसी आएगी और हम कहेंगे आय हाय हम यूं ही इस पे बड़े परेशान हुआ करते थे। तो प्यार में हमेशा बने रहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिलहाल तो बिट्टू भाटिया हैं हमारे सामने दिल का मेल बॉक्स में, उनका मेल खुला हुआ है। कहते हैं कि किसी भी गीत में हम हैं

झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया हैं, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम हैं, बबीता हैं, निखिल और तन्वी बोट हैं, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी आराध्या, आप सब गाना सुनना चाहते हैं ये तो मुझे पता है, लेकिन आप सब लोग जब कोई स्पेशल गाना सुनना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बात तो होगी होगी, और वो जो स्पेशल सॉन्ग है आखिर वो क्यों अच्छा लगता है, जो कि आज अभी इसी वक्त 10:36 मिनट हो चुके हैं, अब भी आपको याद आया, हर बात की कोई ना कोई वजह होती है ना, जैसे कि ऊपरकोट, मोहल्ला चौखुंटी, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद दबासी के पूरे परिवार ने अपना नाम लिखा और अपनी चॉइस लिखी है, कौन सा गाना है ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन देखिए ना हम नाम आपको पहले बता दिया, दिल का मेल बॉक्स है ये fmgold@gmail.com पे आप भी हमें मेल कर सकते हैं अपनी चॉइस वाला गाना।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषा

संवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

दिल का मेल बॉक्स आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से डीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बिटा बजाज, जनकपुरी सहारनपुर से डॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पर्ल और विलिस डिकोस्टा। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो इसलिए कि ये जो डिकोस्टा फैमिली है ये हर बार एंड में अपना भेजती थी मैसेज, इस बार पहले आ गया। सो आपका

बस भाई बस एग्जैक्टली वो लड़की है यहाँ आकाशवाणी दिल्ली की एफएम गोल्ड चैनल पे और ये है दिल का मेल बॉक्स। दिल का मेल बॉक्स में आपके मेल है।

और आप में से कुछ लोग हमें कहते हैं कि भाई आरजी साहिबा, आय हाय ऐसे पता है कोई नहीं बोलता, बड़ा अच्छा लगता है आरजी साहिबा। तो फिर आपने जो हमारे को अपनी फरमाइश भेजी है वो हाजिर होती है वन बाय वन सिर्फ और सिर्फ यहीं पे। ये है नवाब अहमद भारती शबाना बलीमारान से, राजेंद्र जटौलिया उषा जटौलिया हैं दिल्ली नांगलोई से, दाऊदसराय सहारनपुर से हैं अनवर साबरी, शन्नो मुदस्सर मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी। फरमाइश करता है रींगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मतलब दूर दूर से आप हमें सुनते हैं। और FM गोल्ड AIRDelhi@gmail.com पे हमें मेल करते हैं, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से दिल का मेल बॉक्स में आप अपनी उपस्थिति बनाए रखिए। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे आपकी फरमाइश लेकर के हम हाजिर हो जाते हैं। डियर प्रोग्राम एंकर जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल प्रिया दिशानी और निमित अहूजा, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, और कहते हैं किसी भी फिल्म का कोई भी गाना हमें सुनवा दीजिए। तो मुझे कहीं पर पता लगता है, ऐसा लगता है कि हर गाना हमारा गाना है, जैसे कि ये वाला।

कहीं नहीं जा रहे, हम आपके साथ हैं पूरे 12 बजे तक और आपको बताएंगे बड़ी अच्छी अच्छी बातें। लेकिन उससे पहले खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुगू सिक्का, व्हाइट फील्ड बैंगलुरु से भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव, देवेंशु भूषण, संस्कृति पौरुष, और इनका वाला गाना है डी डी एल जे का, तो भाई हम लेके जरूर आए हैं आपका गाना। और हमें सुन रहे हैं दिल्ली से राजन भी, दमा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। पता है कुछ फैमिलीज के नाम तो मुझे रट गए हैं, सच्ची कह रही हूँ, आप बस बोलिए दमा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश, मैं शायद कुछ नाम आपको बता सकूं। और होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवा, सचिन, दीपांशु, ये भी हमारे साथ शामिल हैं इस वक्त दिल का मेल बॉक्स में। एनी फिल्म एनी सॉन्ग, कस्बा अग्रवाल, मंडी, बागपत, यूपी से आसिफ अली खान और मस्कान आसिफ, उनका गाना, ये वाला गाना जो अभी है हमारे पास आपके लिए। जय जय नरेंद्र श्रोता संघ परवणी महाराष्ट्र से रुपेश, महेश, प्रकेश, प्रीतेश और पूरा शंघई परिवार, गांव जाखोल राजस्थान से शंभू, विमला, योगेश, दीपक, कुमारी पूजा, हमारा हर पल खुशियों से भरा रहे, उनकी यही विश है। मुझे अच्छा लगता है, खूब विश कीजिए जितना अच्छा हो सके, बस सब कुछ हमारे आसपास अच्छा, बहुत अच्छा होता रहे।

देखिए बहुत सारे लोगों के नाम अभी भी हमारे पास हैं। शोभापुर दिल्ली देहरादून हाईवे मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गोड़ है, सुखविंदर सिंह सिटी दीवाना गुरुवंश सिंह जोड़ा है और इसके अलावा बहुत सारे। तो फिर आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, ये दिल का मेल बॉक्स तो हमेशा रहता है आपके पास। सलीम अख्तर, रेशमा बेगम है अलीगढ़ से और बड़े सारे नाम आसपास से, और दिल का मेल बॉक्स में जो आपकी ये भागीदारी है बहुत ही फैंटास्टिक है, क्योंकि जब आप अपनी चॉइस हमें भेजते हैं तो ऐसा लगता है कई बार कि अरे वाह, हमारा वाला गाना आपका और आप वाला गाना हमारा है। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल तो बजने वाले हैं 11, समय है ये समाचारों का और उसके बाद फिर से मैं हूं ना यहीं पे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। आयुष्मान भारत के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिला है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 8 वर्ष पहले आयुष्मान भारत की शुरुआत इस सोच के साथ की गई थी कि हर भारतीय को बेहतरीन और किफायती स्वास्थ्य लाभ मिल सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। डॉ जयशंकर कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 21वीं बैठक के अवसर पर विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव और बढ़ते ऋण जोखिम की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: India's engagement with the Global South.
2: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद के परिवेश से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएंगे और ज्ञान साझा करने तथा व्यापक संपर्क के लिए मंच प्रदान करेंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। इससे व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक में ईरान के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने सभी देशों से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने का आग्रह किया। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के सामने समझौता करने या अमेरिका की और कड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करने का ही विकल्प है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि बातचीत दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक

ये है तस्वीर 11:10 और ठीक 57 सेकंड हो चुके हैं। आओ थानू सारिया नू पटियाले दी सैर कराएं। जी हाँ, आज है तस्वीर उसी पटियाला की जहाँ रंग बिरंगे हैं सब कुछ। किला मुबारक शान बढ़ाता है, ढोल बजे तो भंगड़ा छाए, गली गली में हंसी बिखरी रहती है और हर दिल अपना गीत सुनाता है। सरसों के खेत, मिट्टी की खुशबू, पंजाबी दिलों की सच्ची बात, एक बार जो पटियाला आए याद रहे उसे हमेशा ये चीज़।

शहर अनजाना हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद कुड़ी अनजानी नहीं हो सकती, क्योंकि शान पंजाब है, तहजीब का डेरा है, रगों में जिसके रवायत का पहरा है, दौरे शाही की हर बात निराली है, और वो प्यारा सा शहर पटियाला है। शाही शहर की शाही कहानी सिर्फ और सिर्फ तस्वीर में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। तो इसकी अपनी एक अलग रवानी है। पटियाला सिर्फ शहर नहीं है, ये पंजाब की एक निशानी है। अगर आप जा चुके हैं तो बताइए, आप हमें मेल कर सकते हैं, और अगर नहीं गए हैं तो फिर प्लान बनाइए। 11:16 हो चुके हैं, लिख लीजिए डायरी में। प्लेलिस्ट भी आप अपनी मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप मुझे कहेंगे भाई वाह क्या जगह बताई है। इसको कहते हैं, क्योंकि दिल्ली से बहुत पास में है, कि बगल में छोरा और जगह जगह हमने उसको ढूंढा, क्योंकि इतनी पास जगह कई बार हम उसको मिस कर देते हैं। तो इस बार पटियाले का प्रोग्राम ज़रूर बनाइएगा, और तस्वीर में हमारे साथ यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए कहानी एक ऐसे शहर की जो बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन बहुत नया भी नहीं है।

कुड़ी मुंडे सब तैयार हैं। पटियाले की शान आला दुपट्टी जो बना पटियाला, राजपुताना रिवाज नजर आता है। जब आप इस शहर में जाएंगे तो फिर ये देखेंगे पूरे साल भर, सच्ची कह रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे त्योहारों का जश्न हो रहा हो। बैसाखी की धूम बनी रहती है और यहाँ पे खास जड़ी पगड़ी के लिए भी ये शहर जाना जाता है। रेशमी कपड़ों के लिए फेमस है। बाजरे की रोटी खाइए, लस्सी का साथ जब उसके साथ मिलेगा और रोटी पे जब मक्खन होगा तब आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आपकी रोटी ना बादल छा गए हों। और ये पूरा का पूरा नजारा ऐसा जो भुलाए नहीं भूलेगा, और पटियाला आपको ताउम्र याद रहेगा।

तो क्या कोई है जो इस वक्त हमें पटियाले में सुन रहा है? आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे ये है तस्वीर। अगर आप सुन रहे हैं तो fmgoldeirdelhi@gmail.com पे आप हमें बता सकते हैं अपने शहर के बारे में। तो पटियाला पंजाब का एक बहुत ही खूबसूरत और शाही शहर माना जाता है, जो कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, महलों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए ये बहुत ही मायने रखता है। और यहाँ पे मुगल और सिख वास्तुकला का जो अद्भुत नमूना है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक म्यूजियम है, वहाँ पे जाइए, प्राचीन हथियार और शाही वस्तुएं वहाँ रखी हुई हैं, उसको देखिए। शीश महल देखिए, महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा निर्मित ये महल सुंदर कांच और दर्पण की नक्काशी के लिए फेमस है। और उसके सामने ही एक लक्ष्मण झूला भी है, एक आर्टिफिशियल झील है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर बारादरी गार्डन आपको बाहें फैलाए हुए मिलेगा, और वो यही कहेगा एक सुंदर विशाल बगीचा कि आप आइए, जिसमें संगमरमर की इमारतें बनी हैं, घूमने और टहलने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जगह मानी जाती है। और उसके अलावा जो संगीत है वो तो आपके साथ साथ यूं ही चलेगा।

0: दामनबाजी में यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ी जाती, यहाँ दिलों की मोहब्बत भी बड़े पैमाने पे परोसी जाती है, इसीलिए शहर आपका स्वागत करना चाहता है।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूँ?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आई एम श्योर पटियाला वालों को अब तक तो खबर पहुंच गई होगी कि तस्वीर है आज उनके शहर की आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। पटियाला जिसके लिए कहा जाता है कि शाही है लिबास उसका, शाही है रहने का अंदाज, ये पटियाला शहर है हुजूर, यहाँ अदब का है राज। तो फिर आइए गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, पटियाला का बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध सिख

0: तस्वीर है आज उनके शहर की, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। पटियाला जिसके लिए कहा जाता है कि शाही है लिबास उसका, शाही है रहने का अंदाज, ये पटियाला शहर है हुजूर, यहाँ अदब का है राज। तो फिर आइए गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, पटियाला का बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध सिख तीर्थस्थल है ये, और यहाँ पे बहुत संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और उसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे तो काली माता मंदिर पड़ेगा। ये मंदिर महाराज भूपेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया था और यह माँ काली की बड़ी भव्य प्रतिमा है। और उसके बाद शॉपिंग करेंगे, बताएंगे ना आपको तस्वीर में।
1: बाबा है जमालो, हाँ है जमालो, बाबा है।

0: याद मालू।
1: और उसके बाद पटियाला सूट और जुत्ती की तारीफ आप जहां रहते हैं उस शहर में तो जरूर सुनी होगी, लेकिन जरा जाइए तो सही। पटियाला सूट दे नाल जब पैर विच पंजाबी जुत्ती पाई है तो फिर लगेगा कि जीवन पटियाले की पूरी शान से मिटाई है। और उसके अलावा बहुत कुछ है आपके पास जो आप खरीद सकते हैं, जो आप वहां पे बहुत सारी चीजें जिनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट वहां का बहुत लाजवाब है, तो फिर बिना खरीदे मत आइएगा और गुड़ वाली मट्ठी खाइएगा। PB11 गाड़ी नंबर है, उसमें तो आप बैठेंगे ही, और उसके बाद गीत गुनगुनाइएगा।

0: पटियाली की शान में हम तो बहुत कुछ कह सकते हैं, आपका शहर है, समझ सकते हैं कि आखिर आपको अपने इस शहर से इतना प्यार क्या है। तो भाई यहाँ अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले, जैसा कि हम हर बार बोलते हैं, अपना मन बनाइए, बजट बनाइए, मूड बनाइए और फिर चल दीजिए। कैसे भी जा सकते हैं आप, मतलब कि ट्रेन से आप जाइए तो फिर आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या पुरानी दिल्ली स्टेशन से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी बड़े आराम से। और दिल्ली से अगर आप जाना चाहते हैं तो 4 से 4.5 घंटे में आप वहां पे पहुंच जाएंगे। और अगर मान लीजिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो फिर दिल्ली से अम्बाला कैंट के लिए ट्रेन ले सकते हैं और वहां से हर आधे घंटे में आपको ट्रेन मिल जाएगी, क्योंकि अम्बाला से पटियाला सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। और अगर आपकी दिल की बात करें तो आपके दिल के बहुत पास है। जी हाँ, बस घूमने की आस होनी चाहिए।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर

दीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ये है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे। और आपको मैंने बताया नहीं, सड़क से भी आप बड़े आराम से जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। बस घूमने के लिए ना, जो एक जिसको कहते हैं ना, ललक होनी चाहिए, तो फिर दूरी कोई मायने नहीं रखती है।

आई एम श्योर आप आपके जो पैर हैं वो थिरक रहे होंगे क्योंकि बात हो रही है एक ऐसे शहर की जहाँ की पंजाबी जूतियाँ, फुलकारी दुपट्टा, जहाँ का स्वाद और वहाँ की जो पटियाला सलवार है और जो परांदी है, हर चीज़ अपने आप में ना बहुत ही स्पेशल है। गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया और वहाँ के जो मेले हैं उनको अगर आप देखते हुए प्लान करें अपनी जर्नी तो आपको और अच्छा लगेगा। दिल्ली से लगभग 270 से 280 किलोमीटर की दूरी पर है, 4 से 5 घंटे आराम से जाइए और देखिए तो सही कि ये जो बजट फ्रेंडली, आरामदायक आपकी ये जो प्यारी सी जर्नी है वो कैसी लगी, फिर आप हमें बता सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। मेल आईडी fmgold@gmail.com और ये तस्वीर है और तस्वीर में हर बार हम लेकर के आते हैं भारत का एक कोना आपके लिए और बताते हैं कि भाई घूमना कितना जरूरी है हम सब के लिए क्योंकि दूरियां कई बार नजदीकियों में बदल जाती हैं। तो फिर जाइए।

और हम कहना चाहते हैं थैंक यू वेरी मच मधु किरण जी का, जिन्होंने पटियाले को याद करते हुए हमें मेल किया है। आय हाय, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे शहर की याद दिला देती हैं। वैसे अगर आप दिल्ली में पटियाला ढूंढना चाहते हैं तो बड़ी सारी जगह हैं, जाइए ढूंढिए। और इसी के साथ दीजिए इजाजत इंदु पांडे को घूमने के लिए। मैं तो चली, क्योंकि घूमने की इतनी सारी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी तो जाहिर है कि वो सब मेरे भी काम आएंगे ही।

और आप इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में होंगे समाचार और समाचारों के बाद भी आपका साथ यूं ही बना रहेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड में रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। डॉ. जयशंकर कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव और बढ़ते ऋण जोखिम की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक में ईरान के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने सभी देशों से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने का आग्रह किया। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के सामने समझौता करने या अमेरिका की और बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करने का विकल्प है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। इससे व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता प्रगति पर है। उन्होंने कहा है कि बातचीत दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक पूरी हो जाएगी। श्री कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कनाडा जाएंगे। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमरीका के मायामी में होने की संभावना है। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा है। भारत ने आज निशानेबाजी की पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हो गए हैं। महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और

0: 당근.
1: हर घर की अपनी एक कहानी होती है, हर आंगन की अपनी एक धूप होती है और हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। बस जरूरत होती है उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की, जो अक्सर अपनी नजरों के सामने होकर भी अनदेखी रह जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन और साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। मैं हूं आपके साथ इस सफर की रेडियो हम सफर सोनाली और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कौन सा, जी हां घर आंगन। हर दिन की तरह आज भी कुछ ऐसी बातें जो हमारे आसपास की दुनिया से जुड़ी हैं, कुछ जानकारी, कुछ प्रेरणा और कुछ ऐसी कहानियां जो शायद आपको थोड़ी देर ठहर कर सोचने पर मजबूर करें। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे कैसे? जी हाँ, हमारे ईमेल आईडी के जरिए जो है fmgoldga@gmail.com। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर।

फिल्म लोफर में आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में ये गीत। दोस्तों आज है 23 सितंबर और हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सांकेतिक भाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बधिर लोगों के मानवाधिकारों, गरिमा और समान अवसरों को लेकर समाज में समझ विकसित करना है। अब संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 के लिए जो थीम रखी है ना, वो है बधिर लोगों के मानवाधिकारों की घोषणा, यानी डिक्लेयरिंग डेफ पीपल्स ह्यूमन राइट्स। अब सांकेतिक भाषा केवल हाथों के इशारों का नाम नहीं है दोस्तों, ये ना अपनी व्याकरण और अपनी संरचना वाली पूर्ण प्राकृतिक भाषाएं हैं। अब ना दुनिया भर में अलग अलग समुदायों द्वारा, अगर आप यकीन माने तो पता है 300 से अधिक सांकेतिक भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए जरा, हम में से ज्यादातर लोग अपनी बात कहने के लिए आवाज का सहारा लेते हैं, लेकिन किसी के लिए हाथों की गति, चेहरे के भाव और आंखों का संपर्क ही संवाद का रास्ता हो सकते हैं, है ना। इसीलिए समावेश का मतलब सिर्फ किसी को अपने साथ खड़ा कर देना नहीं है, समावेश का मतलब तो वो है कि हम उस तक पहुंचने की भाषा और रास्ता भी बनाएं, क्योंकि संवाद के लिए आवाज जरूरी हो सकती है लेकिन समझने के लिए संवेदना ज्यादा जरूरी है। मानेंगे ना।

दोस्तों, फिल्म कश्मीर की कली में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले की आवाज में ये गीत। आज जैसे कि हमने बताया 23 सितंबर है, एक और खास दिन आज भी हम मनाते हैं। जी हां, हम आज मनाते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती। 1908 में बिहार के सिमरिया गांव में जन्मे दिनकर जी हिंदी साहित्य के ऐसे कवि थे जिनकी रचनाओं में ओज, आत्मसम्मान, संघर्ष और मानवीय संवेदना एक साथ दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध कृति रश्मि रथी को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसमें महाभारत के कर्ण के जीवन को केंद्र में रखा गया था। कर्ण के संघर्ष, उसके आत्मसम्मान और उसके जीवन की विडंबनाओं को दिनकर जी ने जिस तरह शब्द दिए, वह रश्मि रथी को हिंदी साहित्य की यादगार कृतियों में शामिल करता है। दिनकर जी की लेखनी की शक्ति का अंदाजा इन पंक्तियों से लगाया जा सकता है। दोस्तों, सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। कितनी सीधी बात है, इंसान की पहचान उसके नाम या किसी और तरह से नहीं होती, बल्कि उसके कर्म से बनती है। दिनकर जी की जो लेखनी है वो हमें उसमें आत्मविश्वास बार बार दिखाई देता है। उनकी रचनाओं और अपने समय के उस समय के बहुत से सवालों को उनकी रचनाएं उठाती थीं और उनकी लेखनी में वो जुड़ा जाता था, लेकिन उनके भीतर की मानवीय संवेदना आज भी हमें उतनी ही प्रासंगिक लगती है। और शायद यही एक बड़ी साहित्यकार की पहचान है कि भले ही समय बदल जाए, लेकिन उसकी पंक्तियां मनुष्य से लगातार संवाद करती है। और यकीन मानिए, जब कुछ अच्छा हम पढ़ते हैं या सुनते हैं ना, तो मन हमारा अलग ही खुशी से झूम उठता है।

ये झूमता गाता गीत जो आप सुन रहे थे, ये था फिल्म पराया धन से किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की आवाज थी। अच्छा दोस्तों, हमारे साथ आप जुड़े हैं और आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, ये हमारा हौसला बढ़ाता है और साथ ही हमें ये पता चलता है कि हमारे एफएम गोल्ड को आप लोग कितना पसंद करते हैं, साथ ही हाँ हमारे प्रोग्राम घर आंगन को भी। तो देखिए हमारे साथ जुड़े हैं नवीन भाटिया जी, लिख रहे हैं, सोनाली जी कहाँ गायब हो जाते हो, स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया आपकी ईमेल्स, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, जानकर हमें अच्छा लगता है कि आप कमी महसूस करते हैं। तो बस देखिए लौट आई हूँ और फिर मिलती रहूँगी, शुक्रिया आपका। और हमारे साथ ये जुड़े हैं फहीम शलबाफ, श्रीनगर कश्मीर से जुड़े हैं और ये हमारे प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर भी सुनते हैं और इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ये कह रहे हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि हमसे जुड़कर, ये शायद बहुत हमारे पुराने श्रोता हैं, इनको ऐसा लगता है। बिल्कुल देखिए, ये रिश्ता ही हमारा ऐसा है कि आपके साथ कभी लगता ही नहीं है कि आप नए जुड़े हैं या हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं। आपका स्वागत है, हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। फिर हमारे साथ ये हैं उमेश कुमार जी, ये ख्याला से जुड़े हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं प्रोग्राम और गाने साथ में जानकारी भी बहुत अच्छी लग रही है, शुक्रिया। देखिए आप लोग तारीफ तो करते हैं, प्रशंसा हमें किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ आपके सुझाव भी, आपकी भगवान न करे कोई परेशानी हो या आपको हमसे किसी तरह की कोई शिकायत हो, तो वो भी आप हमारे साथ जरूर जरूर साझा कीजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।

जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के 7.1 MHz FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन, और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हमसफर सोनाली। देखिए दोस्तों, हमारे घर में सफाई हो, आंगन साफ हो, रसोई साफ हो, ये तो हम सब चाहते हैं, है ना। और लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी जो ये सफाई की है, ये घर की चौखट तक ही खत्म हो जाती है? नहीं, जिस सड़क से हम गुजरते हैं, जिस पार्क में हमारे बच्चे खेलते हैं, या जिस बाजार में हम खरीदारी करते हैं, या जिस सार्वजनिक जगह पर हम कुछ देर बैठते हैं, घूमते हैं, वो भी तो हमारा ही है ना। और इसी सोच को जन भागीदारी से जोड़ते हुए हमारे इस देश में इस समय स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान चल रहा है। ये जो अभियान है ना, ये 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा, और इस वर्ष का जो इसका विषय है वो है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। यानी स्वच्छता केवल सरकार या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर नागरिक की भागीदारी से जुड़ा एक बहुत अहम विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करते हुए नागरिकों से स्वच्छता के लिए अपना समय और श्रम देने का आह्वान किया था। आज भी स्वच्छता से जुड़े अभियानों में जनभागीदारी को महत्वपूर्ण जगह दी जाती है। और देखिए, सफाई ही सेवा यानी स्वच्छता ही सेवा 2026 में सारे सार्वजनिक स्थानों का बहुत सफाई से कायाकल्प करना, साफ सुथरी पाठशाला होना, और इसमें युवाओं की भागीदारी, सफाई मित्रों की सुरक्षा और उनका सम्मान, जन भागीदारी, और कमरे से उपयोगी संसाधन कचरे से उपयोगी संसाधन तैयार करने जैसी गतिविधियों पर जोर दिया जाता है। लेकिन किसी भी अभियान की असली ताकत तब बनती है जब वो हमारी आदत में उतर जाए, है ना। और देखिए, कूड़ा सड़क पर न फेंकना, गीले और सूखे कचरे को अलग रखना, फिर अगर जहां संभव हो हर बार इस्तेमाल होने वाली चीजों की जगह बार बार इस्तेमाल होने वाली चीजें चुनना, मतलब एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज कभी भी आप कोशिश कीजिए उसे ना इस्तेमाल करें, और सफाई करने वाले हाथों का सम्मान करना। जी हाँ, हमारे आसपास हमारे जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, उनकी सफाई, उनकी मेहनत का सम्मान करना। और हाँ, घर में भी आपकी जो माँ है, आपकी पत्नी है, या घर की महिलाएं हैं, उनकी साफ सफाई में पूरा योगदान देना पूरे परिवार का एक धर्म और कर्तव्य होना चाहिए। और हमें अपनी इस कर्तव्य परायणता को आगे भी, समाज के लिए भी आगे लेके चले जाना चाहिए। और देखिए, छोटे काम से ही ना बहुत बड़ी तस्वीर बनती है, क्योंकि स्वच्छता एक अभियान है। जब तक हम उसे बाहर से देखते हैं, जिस दिन वह हमारी आदत बन जाती है, उस दिन वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि इस धरा को हरा भरा और सुंदर कौन नहीं देखना चाहता,

बूंद जो बन गई मोती। इस फिल्म से आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में ये गीत। दोस्तों हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जुड़े हैं, हमारे श्रोता हैं। ये हैं गौरीशंकर जी, नांगलोई से लिखते हैं, सोनाली बेटा राम राम। जैसे हम खाने का इंतजार करते हैं वैसे ही आपके प्रोग्राम का इंतजार करते हैं, सुनकर बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, शुक्रिया। अरे शुक्रिया आपका गौरीशंकर जी, आप इतने प्यार से हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और हमारा इतनी हौसला अफजाई करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करें और अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन ना उच्च शिक्षा की जो फीस होती है और दूसरे खर्च कई परिवारों के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे ना नवंबर 2024 में मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो भी आर्थिक कठिनाई के कारण मेधावी विद्यार्थी उच्च शिक्षा से अगर किसी वजह से वंचित रह रहे हैं तो ना रहें। और इस योजना के तहत ना देश के कुछ ऐसे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान हैं जहां पर वो अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश पा सकते हैं और उन्हें वहां पर प्रवेश पाने के लिए शिक्षा ऋण के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। अपना दोस्तों इस ऋण की जो खास बात है वो ये है कि इसके लिए जमानत और तीसरे पक्ष के गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है। और ना यहाँ पर एक बहुत खास बात ध्यान देने के लिए जरूरी है, वो ये है कि शिक्षा ऋण की कुल राशि की कोई एक अधिकतम सीमा इस योजना में तय नहीं है। यानी ऋण की राशि पाठ्यक्रम की फीस, संस्थान से जुड़े दूसरे खर्चों और उचित शैक्षणिक और जीवन यापन संबंधित खर्चों पर निर्भर करती है। और इसके अलावा ना जिन विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है उनके लिए 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज सहायता का प्रावधान भी है। और ये सहायता पाठ्यक्रम की अवधि और उसके बाद एक वर्ष की जो स्थगन अवधि के दौरान दी जाती है। अब दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है ना, इसमें आवेदन की प्रक्रिया जो है वो डिजिटल है पूरी तरह से। इसके लिए जो हमारे विद्यार्थी हैं वो पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहां पर शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय अपनी पसंद के बैंक का चुनाव किया जा सकता है और पोर्टल पर आवेदन की स्थिति भी देखी जा सकती है। अब देखिए

एक विद्यार्थी आवेदन के समय अधिकतम ना एक साथ 3 बैंकों का चुनाव कर सकता है। एक और जरूरी बात वो ये है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए संस्थान का निर्धारित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों की सूची में होना और प्रवेश का योग्यता के आधार पर होना बहुत जरूरी है। अब ना प्रबंधन कोटे से जो लिया गया प्रवेश होता है वो इस योजना के लाभ के लिए पात्रता उसकी नहीं होती है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई बच्चा उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहा है ना, तो केवल किसी की भी बात पर भरोसा न करें। आधिकारिक पोर्टल पर पात्रता, संस्थान और

www.mi.co.in, क्योंकि हम जानते हैं कि सही समय पर मिली सही जानकारी कई बार किसी विद्यार्थी के लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता बन सकती है।

अखियों की झरोखे से। इस फिल्म में आप सुन रही थी हेमलता के साथ शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गाना। अच्छा दोस्तों, हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं और इस बात पर कई बार अमल भी हम करते हैं और बहुत बार कर रहे हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है। और लेकिन ना, जब किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए छोटा सा कोई प्रोत्साहन भी मिल जाए ना, तो बदलाव थोड़ा सा आसान हो जाता है, है ना। देखिए, अब मैं आपके लिए बहुत प्रेरणादायक एक चीज लेकर आई हूँ। वो ये है कि गुजरात में अंबाजी की पदयात्रा के दौरान प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए एक ऐसी ही पहल की गई है। देखिए, इस पहल में ना इस्तेमाल की जा चुकी प्लास्टिक की बोतलें जमा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और 10 प्लास्टिक की बोतलें जमा करने पर स्टील की दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली जो बोतलें होती हैं वो देने की व्यवस्था की गई है। मतलब आप 10 यूज की हुई प्लास्टिक की बोतलें दीजिए और उसके बदले में एक स्टील की बोतल आपको दी जाएगी। पदयात्रा और धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ये तो हम मानते हैं, और ऐसे में पानी की बोतलों से पैदा होने वाला कचरा भी बहुत बार बढ़ जाता है, है ना। और इसी पहल का विचार जो है वो यही है कि इस्तेमाल के बाद जो बोतल होती है वो सड़क या आसपास फेंकने की बजाय उसे जमा किया जाए और उसकी जगह ऐसी बोतल दी जाए जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक छोटी सी अदला बदली। और 10 इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक बॉटल्स कम और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली एक टिकाऊ बोतल ज्यादा सही है ना, है ना। तो देखिए, ऐसे में बात सिर्फ एक बोतल की नहीं है, बात उस आदत की है जो धीरे धीरे हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा

बन जाती है। और अगर हम घर से निकलते समय अपनी पानी की बोतल साथ रखें, बाजार जाते समय कपड़े का थैला रखें और किसी चीज का इस्तेमाल खत्म होने के बाद यह सोचें कि उसे फेंकना जरूरी है या नहीं, तो पर्यावरण के लिए हमारी छोटी सी कोशिश बहुत ज्यादा मायने रख सकती है। क्योंकि प्रकृति के जो हमारी जो जिम्मेदारी है ना प्रकृति के लिए, वो हमेशा किसी बड़े काम से शुरू नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी आदतों से ही ये बात आगे बढ़ती है। और इसी तरह की बातों को मद्देनजर रखते हुए ये पहल गुजरात में शुरू की गई है। तो ये हुई एक बहुत प्रेरणादायक एक जानकारी आपके लिए। और अब सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत।

आशा भोसले लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म प्रोफेसर का आप गाना ये सुन रहे थे। दोस्तों आपको एक खास जानकारी यहाँ पर देते हैं, बिहार के नालंदा की 52 बूटी हस्तकरघा कला हमारे देश की उन परंपराओं में

शामिल है जिनमें कपड़ा सिर्फ पहनने की चीज नहीं रहता, वो अपने साथ एक पूरी सांस्कृतिक कहानी लेकर चलता है। इस कला को आपको पता है अब भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिल चुका है। भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय के आधिकारिक रिकॉर्ड में इसका नाम नालंदा बावन बूटी सारी एंड फैब्रिक्स दर्ज है और इसका पंजीकरण 27 मार्च 2026 को हुआ है। बावन बूटी नाम में ही इसकी खासियत छिपी है। बावन बूटी यानी ऐसी बावन बूटी जो कपड़े पर बुनी जाने वाली छोटी छोटी आकृतियां होती हैं। नालंदा के बुनकर अपनी पारंपरिक बुनाई में कमल, बोधि वृक्ष, पीपल के पत्ते, धर्मचक्र और दूसरी सांस्कृतिक आकृतियों को कपड़े पर उकरते हैं। यानी एक साड़ी तैयार होती है लेकिन उसके साथ तैयार होती है एक कहानी, किसी परिवार के हुनर की कहानी, किसी गांव की पहचान की कहानी और उन हाथों की कहानी जिन्होंने बदलते समय के बीच अपनी परंपरा को टूटने नहीं दिया। GI टैग किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी वस्तु और उसकी विशिष्ट पहचान को आधिकारिक मान्यता देता है। बावन बूटी को यह मिली जो पहचान है, यह नालंदा की इस पारंपरिक बुनकरी को एक नई पहचान देती है ना। तो बस अब हम आ गए हैं हमारे कार्यक्रम के आखिरी चरण पर। चलते चलते आपके लिए ये गीत।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से एआई की नई तकनीक इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से कहा कि डेटा आपको सूचना दे सकता है, लेकिन निर्णय आपका होगा।
1: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है। डेटा आपको सूचना दे सकता है, लेकिन उस सूचना के नैतिक उपयोग कैसे करना है ये निर्णय आपको ही करना है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि एआई से सही सवाल पूछना चाहिए और आपको कभी कभी असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ने जियो और जीने दो की सोच के साथ आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने विद्यार्थियों से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देने का भी आह्वान किया।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मना रहा है। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से हटकर डेटा आधारित डिजिटल माध्यमों से संचालित प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत के फेसलेस आकलन, पहले से भरी हुए रिटर्न, रियल टाइम इनवॉइस प्रमाणीकरण और एआई सक्षम करदाता सहायता के अनुभव ने ब्रिक्स साझेदारों के बीच रुचि पैदा की है। मेघालय में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी के 8 विधायक आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। इनमें लक्ष्मण रिम्बुई, पीयूष मार्विन, किरमेन शाला और मायराल बोन सीएम प्रमुख हैं। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता किरेन रिजिजू, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और अनिल एंटनी की मौजूदगी में इन विधायकों को पार्टी में सम्मिलित किया गया। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजों की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीत लिए हैं। अनंत जीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान, भवतेज सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लो की भारतीय तिकड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23-37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21-42 अंक से मात दी। प्रतियोगिता में कल भारत का सामना जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार का सूचकांक आज दोपहर तक 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 383 अंक बढ़कर 74,912 पर और निफ्टी 115 अंक की बढ़त के साथ 23,444 पर था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anubha Rohatgi.

एक अभिनेत्री जिनकी माँ ही नहीं नानी भी एक जानी मानी अभिनेत्री थी और उनकी बेटी भी एक लोकप्रिय अदाकारा है। अपने अलहर और चुलबुले अंदाज से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली तनुजा है हमारी आज की कलाकार बेमिसाल। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपके साथ है रजनी। कलाकार बेमिसाल की शुरुआत करते हैं एक बेहद लोकप्रिय गीत के साथ। फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी और आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

23 सितंबर 1943 को फिल्म निर्माता कुमार सेन समर्थ और शोभना समर्थ की बेटी के रूप में जन्म हुआ तनुजा का। उनकी बड़ी बहन नूतन के अलावा उनकी दो और बहनें और एक भाई भी हैं। शोभना समर्थ तो अपने समय की जानी मानी अभिनेत्री थी ही, उनकी माँ रतनबाई भी 30 और 40 के दशक की सफल अभिनेत्री थी। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म मेरे जीवन साथी से, आवाज है किशोर कुमार की।

शोभना समर्थ ने अपनी दोनों बेटियों नूतन और तनुजा को लॉन्च करने के लिए हमारी बेटी फिल्म बनाई। साल था 1950। इस फिल्म में नूतन मुख्य भूमिका में थी और तनुजा बाल कलाकार के रूप में दिखाई दी। इसके बाद 1952 में आई फिल्म अंबर में भी तनुजा ने नरगिस के बचपन का रोल किया। 1960 में छबीली फिल्म में नूतन और तनुजा एक बार फिर साथ दिखाई दी। ये फिल्म भी शोभना समर्थ ने ही बनाई थी, लेकिन मुख्य अभिनेत्री के तौर पर तनुजा की पहली फिल्म थी हमारी याद आएगी, जो कि 1961 में रिलीज हुई। इसमें केदार शर्मा ने अपने बेटे अशोक शर्मा के साथ तनुजा को लॉन्च किया। ये फिल्म तो दर्शकों के दिलों में जगह नहीं बना पाई, लेकिन हाँ, इससे तनुजा को एक पहचान जरूर मिल गई। इसी फिल्म से अगला गीत मुबारक बेगम की आवाज में।

अगर आपने ये फिल्म देखी है हमारी याद आएगी, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो फिल्म है ये तनुजा की शुरुआती फिल्म है। इस फिल्म में वो इतनी कॉन्फिडेंट और इतनी सहज लगी हैं कि जैसे कोई बहुत ही परिपक्व अभिनेत्री हो। इसके बाद मेम दीदी, आज और कल, चंदा और सूरज, नई उम्र की नई फसल, भूत बंगला, दादी माँ, बहारे फिर भी आएंगी, नई रोशनी, जूल थीफ, सपनों का सौदागर और जुआरी जैसी फिल्म में वो सहनायिका के रूप में नजर आई। लेकिन 1969 में आई फिल्म जीने की राह में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और इसकी सुपर सक्सेस ने तनुजा को बुलंदी पर पहुंचा दिया। इसी फिल्म से आपको सुनाते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

मेरी वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम फ्रिक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। आज सन 2026 सितंबर महीने की 23 तारीख और दिन है बुधवार। श्रोताओं, आकाशवाणी के तवंग केंद्र से हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्रीमती संगीत सुमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री तानिंग ताको और श्री न्यूटन बोरा, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अच्युत परमन और श्री हेमंता सुरगिरी, मोनपा में उद्घोषक श्री लोफसंग तोप्तन तथा अन्य कर्मचारियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका येशी वंगमू। कार्यक्रम सुनने आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: एमएफ के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोतों, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे मिड न्यूज के अंतर्गत अंग्रेजी में समाचार। तत्पश्चात दोपहर 2:15 पर सुनेगा दोपहर समाचार के तहत हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुभा रोहतगी विद द मिड डे न्यूज। The headlines. President Draupadi Murmu says youth efforts will propel India to a developed nation before 2047. Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurates BRICS tax heads meeting in Delhi. Calls for stronger BRICS voice in global tax negotiations. Indian Railways commissions Kavach 4.0 for the first time on South Central Railway. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana marks 8 years of transforming public healthcare access across India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar discusses collaboration.

0: अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला इसकी टीमों को कांस्य पदक। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से एआई की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया।
1: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
0: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
1: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में, घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगी। वे विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली तीन व्यापक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी, प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
2: Look at what has emerged from the BRICS.
3: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
2: A durable institutional shape.
0: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में दो नए कार्य समूहों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की

0: दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
4: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, मार्च 2023 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं तक 1,240 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है, क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
5: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
4: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1 लाख रुपए का स्टॉक रखते हैं।
6: माय नेम इज रमेश।
7: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूँ। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए

0: का लोन चल रहा है, मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर चुका रहा हूं। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था, वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखता हूं।
1: स्टॉक वर्थ 1,00,000 रुपए।
2: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
3: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जान नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।
5: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेज सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिणाज धारीवाल, रायजा ढिल्लों और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: श्रोताओं, आपने सुना आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय दोपहर के 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसमें आइए सुनते हैं शिव महिमा भक्ति गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदना।

Și eu tot vi-am nesuna jend shiv mehima bhakti git. Inni bhakti gitom ke saath hi dainik karyakram vandana bhi par samapt hota hai. Medium ki meter band par aapki seva mein ye Akashvani ka tavang kendra hai. Samay dopahar ke theek 3 baje hai. Aur ab prastut hai vibhinn pranton ki gitom ka karyakram pradeshik sangeet. Iske antargat aayanand lete hain. जयंता हजारिका के आवाज में चंद असमय आधुनिक फिल्मी नगमे तो आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत

0: श्रोताओं व्यापार ले रहे थे जयंता हजारिका के आवाज में चंद असमीय आधुनिक फिल्मी नगमे। इन्हीं नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अभी पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के 3:30 हुए हैं और अब पेश है कार्यक्रम मेरी बात। कार्यक्रम मेरी बात में आइए सुनते हैं सीडीपीओ तवांग के तहत संचालित वन स्टॉप सेंटर तवांग के कामकाज और जागरूकता विषय पर एडवोकेट रंजन वांगमो द्वारा दिए गए संदेश।
1: आकाशवाणी तवांग सुन रहे आप तमाम श्रोताओं को सबसे पहले नमस्कार। मैं एडवोकेट रंजन वांगमो आज मेरी बात कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को एक छोटा सा अवेयरनेस देना चाहूंगी। सीडीपीओ डिपार्टमेंट के अंदर एक स्कीम है वन स्टॉप सेंटर, जहां पीड़ित महिलाओं को मदद दी जाती है। जैसे कि अगर कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित हो तो हमारे ऑफिस में उसे कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। जैसे कि पहला है इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड रेस्क्यू। अगर कोई महिला हमारे ऑफिस तक तुरंत ना आ पाए तो वो 181 पर कॉल कर सकते हैं हमें, और हम आपके रेस्क्यू के लिए बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाते हैं।

0: और दूसरा है लीगल एड एंड काउंसलिंग। और जो पीड़ित महिला हमारे ऑफिस में आते हैं तो हम उसे लीगल राइट्स के बारे में बताते हैं, उसके हक के बारे में बताते हैं, उसका क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा उसके बारे में बताते हैं, और अगर कोर्ट में जाना चाहते हैं तो कोर्ट में जाने के लिए भी उसे मदद करते हैं। और तीसरा है पुलिस असिस्टेंस, अगर कोई घरेलू हिंसा का शिकार होता है, महिलाओं को मारता है पीटता है, तो उस औरत को पुलिस के थ्रू भी बहुत सारा मदद मिलता है। अभी तक पुलिस वालों ने वन स्टॉप सेंटर के साथ मिलकर बहुत सारे केसेस डील किए हैं और पुलिस वालों ने भी वन स्टॉप सेंटर को बहुत ही मदद किया है। और चौथा है आपका मेडिकल असिस्टेंस। मेडिकल असिस्टेंस क्या होता है, अगर घरेलू हिंसा के चलते कोई पति अपने पत्नी पर हाथ उठाता है उसे चोट लग जाता है तो हमारे ऑफिस में नर्स भी है, तो नर्स द्वारा उसका चेकअप किया जाता है। अगर वो ज्यादा सीरियस हो तो हमारे स्टाफ के द्वारा ही डिस्ट्रिक्ट मेडिकल में उसे ले जाया जाता है और उसका फर्दर चेकअप के लिए वहीं पर देखभाल किया जाता है। और है शेल्टर, अगर कोई महिला घरेलू हिंसा के चलते उसके घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया हो तो उसे 5 दिन के लिए रहने का और खाने का बंदोबस्त हमारे ऑफिस में ही मिल जाता है। उस 5 दिनों के अंदर में हम केसेस को अच्छी तरह से देखते हैं और अगर केस कोर्ट में भेजना पड़े तो हम कोर्ट में भेजते हैं, और अगर दोनों मिलकर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो उसका एग्रीमेंट बनाकर हम उसे हमारे ऑफिस में ही केस को खत्म कर देते हैं। अंत में मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत लोगों का ये गलत फहमी होता है कि हमारे वन स्टॉप सेंटर जो वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन है यानी कि अमा छप्पा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप सब जान ले कि हमारा ऑफिस CDPO ऑफिस के अंदर में एक स्कीम के तौर पर काम करते हैं, तो ये बिल्कुल भी अमा छप्पा का ऑफिस नहीं है। ये हमारा अपना CDPO ब्रांच के अंदर में एक ऑफिस है जिसे हम कहते हैं वन स्टॉप सेंटर। थैंक यू।
1: श्रोताओं, भी आपने सुना सिरिपा तवांग के तहत संचालित वन स्टॉप सेंटर तवांग के कामकाज और जागरूकता विषय पर वन स्टॉप सेंटर तवांग के एडवोकेट रिंजिन वांगमो द्वारा दिए गए चंद संदेश। श्रोता के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अभी पर समाप्त होता है। मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हुए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा आई आनंद लेते हैं श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा के युगल आवाजों में फिल्म आई हैड लव स्टोरी से। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

मीडियम एफ 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और FM 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोतों समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। गीत मंजरी कार्यक्रम को आरंभ करते हुए पहला नगमा ये सुनता है फिल्म स्त्री 2 से वरुण जैन, शिल्पा राव और सचिन जिगर की आवाजों में। इस गीत के गीतकार है वरुण जैन और शिल्पा राव तथा संगीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा आनंद लेते हैं मोनाली ठाकुर की आवाज में फिल्म मारा से। शव रचना कौसर मुनीर के है तथा मौशी की सोहिल सेन का।

0: दलजीत दुष्यंत की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा सुरमा फमसी। इस गीत को लिखा है गुलजार ने तथा संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।
1: नूर नूर कहता हूं
2: कभी मैं

श्रोता भी आपने आनंद लिया अल्कायदमिक और बाबुल सुप्रियो की गुलाबाजों में फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए सी कही यह खूबसूरत गीत। इस गीत के गीतकार थे समीर दत्ता, संगीतकार थे नदीम श्यवन। श्रोता समय आप आनंद ले रहे हैं चंद हिंदी फिल्मी नगमे कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तावंग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा उदित नारायण और अलका आदमी के युगल सुरों में फिल्म फिदा से। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

शुद्ध कार्यक्रम का अंतिम पेशकश को हमने लिया है फिल्म सैयारा से, विशाल मिश्रा और हंसिका परेख के युगल आवाजों में। इस गीत के गीतकार है राजशेखर तथा संगीतकार है विशाल मिश्रा।

श्रोता हूँ विशाल मिश्रा और हंसिका परेख की गाय फिल्म सैयारा केसी दगमी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अभी पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं समय संध्या के 4:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। राग रंग कार्यक्रम में लीजिए पेश है आनंद लाल से राग मुल्तानी पर शहनाई वादन। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोता भी आप सुन रहे थे आनंद लाल से राग मुल्तानी पर शहनाई वादन। श्रोता सी के साथ ही शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग अभी पर समाप्त होता है। श्रोता हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आने प्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या 4:45 पर सुनेगा हिंदी में समाचार तथा 4:55 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: यह आकाशवाणी है, अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग में शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना के साथ ऑल मिसेस स्टूडेंट्स यूनियन आंसू के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें शिक्षा और छात्र कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिला प्रशासन द्वारा जिले के कस्बों में स्वच्छता अभियान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की गई। BSNL ईस्ट 2 टेलीकॉम सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक रामाश्वर प्रसाद ने ईटानगर स्थित लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैट केटी पारनायक से मुलाकात की। अरुणाचल प्रदेश सब जूनियर बॉयज राज्य फुटबॉल टीम के सिलेक्शन ट्रायल के लिए करीब 90 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया। ये टीम राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के 8 वर्ष पूरे। और जापान एशियाई खेलों में मीरा भाईचानो ने वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला स्की टीमों को कांस्य पदक। जय मीणा ने स्कॉट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
0: राष्ट्रपति ने कहा है कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से AI की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान भी किया।
1: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना।
0: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा भी की।
1: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में, घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति

0: ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राष्ट्रपति आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। वे विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधन को आगे बढ़ावा देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मौजूद भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा है कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर प्रशासन कागजी डेटा आधारित और डिजिटल माध्यमों से संचालित प्रणालियों की ओर बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सेवा के उभरने वाले तीन व्यापक क्षेत्रों प्रौद्योगिकी, प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी प्रदान की।
1: Look at what has emerged from the BRICS.
2: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
3: आयुष्मान भारत योजना।
0: अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग ने शिक्षा मंत्री पासांग दोर्जी सोना के साथ ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन आंसू के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में शिक्षा और छात्र कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा है कि बैठक में प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की गई और निरंतर संवाद, समन्वय तथा सार्थक समाधान की साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से इन समस्याओं के समाधान की दिशा में संभावित कदमों पर विचार किया गया। अपर सुबनसिरी जिला प्रशासन द्वारा जिले के कस्बों में स्वच्छता अभियान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारी, गैर सरकारी संगठन एवं रिसोर्स पर्सन शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले के शहरी और अर्धशहरी ठोस क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने तथा स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यवहारिक और टिकाऊ उपाय तैयार करना था। बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने कचरा संग्रहण, निपटान, जनभागीदारी तथा बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा और विचार विमर्श किया। जिला प्रशासन ने सभी हितधारकों से उचित तरीके से कचरा निपटान सुनिश्चित करने और निरंतर स्वच्छता बनाए रखने के लिए मिलकर कार्य करने का आग्रह किया, जिसका उद्देश्य अपर सुबनसिरी के कस्बों में अधिक स्वच्छ और पर्यावरण की दृष्टि से अधिक टिकाऊ बनाना है। बीएसएनएल ईस्ट टू टेलीकॉम सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक रामाश्रय प्रसाद ने ईटानगर स्थित लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पारनायक से मुलाकात की। इस दौरान राज्यभर में बीएसएनएल के दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार और उसे मजबूत करने पर चर्चा की गई। विशेष रूप से दूरदराज, ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर करने पर जोर दिया गया है। मुख्य महाप्रबंधक ने राज्य में संचार नेटवर्क की स्थापना की प्रगति और सामने आ रही चुनौतियों के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी। उन्होंने उपयोगकर्ताओं को हो रही परेशानियों को भी स्वीकारते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर करने की सहमति जताई है। राज्यपाल ने सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम के रूप में बीएसएनएल की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि संचार सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, खासकर ऐसे दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में जहां निजी ऑपरेटर्स की मौजूदगी सीमित हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश सब जूनियर बॉयज राज्य फुटबॉल टीम के सिलेक्शन ट्रायल के लिए करीब 90 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। ये टीम राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। ट्रायल निर्जुली स्थित डॉनलीट फुटबॉल एकेडमी में आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2014 के बीच जन्मे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चयन प्रक्रिया के माध्यम से उन खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए राज्य टीम का हिस्सा बनेंगे और राष्ट्रीय चैंपियनशिप 10 अक्टूबर 2026 से आयोजित की जानी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। यह विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस योजना से

0: चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग वाले को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा है कि 8 वर्ष पहले ये योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा है कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र।
0: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों में वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की सटीक स्पर्धा में महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते हैं। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंकों से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंकों से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला स्केट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिनाज धालीवाल, राजिया ढिलो और महेश्वरी चौहान को भी बधाई दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शुभशाची भट्टाचार्य। President Draupadi Murmu has expressed confidence that India will become a developed nation even before 2047 through the efforts of the youth. Addressing the 75th convocation ceremony of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda in Vadodara today, she said that education becomes meaningful only when it is put to use for the nation and society. The president said that technological transformation is taking place in every field today. She added that a multidisciplinary approach is the solution to many of the challenges being faced today. She also appreciated the increasing participation of women in various fields, including education. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the decisions taken in the ongoing multilateral tax negotiations over the next few years would shape cross-border taxation for a generation. Addressing the inaugural session of the BRICS tax heads meeting in New Delhi today, Mrs. Sitharaman said the BRICS countries are large developing economies and source jurisdictions that have built significant domestic tax capacity from a low base, and their perspective is essential to making these negotiations fair and lasting. Talking about tax administrations, Mrs. Sitharaman said they are moving from paper-based and relationship-dependent processes to data-driven and digital systems. She added that India's experience with faceless assessment, pre-filled returns, real-time invoice authentication and AI-enabled taxpayer assistance has attracted interest from BRICS partners. Indian Railways has achieved a significant milestone in railway safety with the successful commissioning of Kavach version 4.0 for the first time on South Central Railway. Railway Ministry said the upgrade from Kavach version 3.2 to version 4.0 has been successfully completed over 108 route kilometers on the Malkagiri Kamareddy section of Hyderabad division. Kavach 4.0 brings enhanced safety, advanced technology, higher reliability and safer train operations. Minister for Ayush Pratap Rao Jadhav today said Ayurveda offers a holistic approach for preventing lifestyle related diseases and maintaining health through a balanced diet, disciplined routine, sound sleep, yoga and harmony with nature. Addressing the national celebrations of the 11th Ayurveda Day in Nagpur, Mr. Jadhav said the theme of this year's Ayurveda Day is Ayurveda for a healthier tomorrow. Stressing upon the importance of Ayurveda-aligned lifestyle, he said the first center of healthcare is the home and the first foundation of health is a healthy lifestyle rather than medicines alone. The Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has completed 8 years today. In a social media

Mata,

मीडियम में 196.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही FM 104 MHz पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आइए पहले सुनते एक सूचना। जिला निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी तवंग के कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार निर्वाचन अधिकारी तवंग टू तवंग ST विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता सूची के मसौदे में संशोधनों की सूची 1 जुलाई 2026 को पात्रता तिथि मानते हुए और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के अनुसार तैयार की गई है। उक्त मतदाता सूची की एक प्रति संशोधनों की उक्त सूची सहित कल यानी गत 22 सितंबर 2026 को प्रकाशित की गई है और AERO कार्यालय में कार्य समय के दौरान और सभी मतदान केंद्रों के संबंधित PLO के पास निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा। सूचना समाप्त हुआ। शोधों कार्यक्रम जरोखा के अंतर्गत आइए हम आपको अवगत करवाते हैं आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। आज के शेष कार्यक्रमों में अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:20 पर सुनेगा दैनिक शेदन लेर में आचार्य थुपथन ताशी और साथियों से गुंचक सुम्पा शिरचिन ओंतोयन और गोवा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित शाम 7 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर सुनेगा अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर आप आनंद ले सकेंगे साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज शाम 7:45 पर सुनेगा प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर सुनेगा एक देशभक्ति गीत फिल्म उपकार से महेंद्र कपूर की आवाज में। रात्रि 8 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमे। आज रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या तथा ठीक रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे News@9। आज रात्रि 9:15 पर कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक बार फिर जानकारी दी जाएगी। आज रात्रि 9:16 पर आज के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए श्रोताओं अब हम आपको कल यानी 24 सितंबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दूं। हमेशा की तरह हमारा कल का सभा आरंभ होंगे कल दोपहर 2 बजे मीटे न्यूज के अंतर्गत। कल दोपहर 2:15 पर सुनेगा दोपहर समाचार के तहत हिंदी में समाचार। कल दोपहर 2:30 पर

कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत आप सुन सकेंगे नरेंद्र चंचल की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। कल पर 3 बजे आप सुन सकेंगे कुमार सानू की आवाज में चंद बांग्ला आधुनिक नगमे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत। कल पर 3:30 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम मेला मंच। कल पर 3:50 पर आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत क्रूक फिल्म से निखिल डिसोजा की आवाज में, छिछोरे फिल्म से तुषार जोशी के स्वर में, एक दीवाना था फिल्म से लियोन डिसोजा और सुजैन डीमेलो की आवाजों में, मैरीकॉम फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से सुनिधि चौहान अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में, शिवाय फिल्म से अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजों में, ब्रेक के बाद फिल्म से विशाल दल्लानी और एलिसा मेंडोनका के सुरों में, बॉडीगार्ड फिल्म से एश किंग और क्लिंटन सीरीजों के सुरों में, ये दिल है मुश्किल फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में और आयशा फिल्म से निखिल डिसोजा और अमित द्विवेदी की आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। कल संध्या 4:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग में रानू मजुमदार से बांसुरी वादन। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार 4:45 पर तथा 4:55 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 5 बजे आप सुन सकेंगे रोजाना की तरह मौनपा कार्यक्रम के अंतर्गत नामधर लेरिम। 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मौनपा में श्री संगीत राशि से। कल शाम 5:35 पर सुनिएगा डिंग दुई समा। 6 बजे लेरिम सीधा 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर सुनेगा शारो गांव के हमारे रिंचिन संगमो और साथियों से बोध भक्ति भजन। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 7 बजे। कल शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम आज की कविता में एलडीएस कोरस होम विद्यालय के 5वीं कक्षा के छात्र डुंडुफ वामो धमकी से एक कविता। कविता का शीर्षक होंगे आइसक्रीम मैन। कल शाम 7:11 पर आप सुन सकेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम एक अनेक के अंतर्गत सोनू निगम के साथ अन्य गायकों से चंद हिंदी फिल्मी नगमे। इसके अंतर्गत आवाना ले सकेंगे फिल्म परिनेता, फिल्म सलाम ए इश्क, फिल्म हे वे वे, फिल्म पी के, फिल्म क्रिश, फिल्म कवि अलविदा नाकेना और फिल्म फना से चंद नगमे। आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित कल शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल शाम 7:55 पर सुनिएगा एक देशभक्ति गीत सोहेल सेन और साथियों की आवाजों में फिल्म के लिए हम जी जान से ऐसे। कल रात्रि 8 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। कल रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या तथा ठीक रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। कल रात्रि 9:15 पर अगले दिन प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। कल रात्रि 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी के साथ ही कार्यक्रम जरोखा वहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा मौनपा में। कृपया कुछ पलों

0: 公主啊，点来点钱喏，
1: 三面红包你拿走，我你面送
0: 点钱，一夜面团瞧不如，
1: 南方工作人员
0: 多把一年。

0: रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता बढ़ेगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसी युवा शक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा, सह अस्तित्व और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉ सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे प्रेरित रहें और अपने दायित्वों की प्रभावी ढंग से निभा सकें। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन IOC के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत के संदर्भ में की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का IOC को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी अप्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी नाओरोम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमांग निंगतियास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में महिला टीम और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ और साथ ही एफएम फ्रीक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय शाम के 7:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। इसे संचालित तथा प्रस्तुत करता है दुर्जी रमा। तो आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: दोस्तों, आकाशवाणी तवांग की 52वीं वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 23 सितंबर 2026 को आकाशवाणी तवांग ने तवांग जिले में अपनी स्थापना के गौरवशाली 52 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 52 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी तवांग ने न केवल समाचार और सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाया, बल्कि स्थानीय संस्कृति, भाषा, परंपराओं और लोक जीवन की आवाज को भी सशक्त मंच प्रदान किया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आकाशवाणी तवांग के सभी श्रोताओं, अधिकारियों और कर्मियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आइए विश्वास और सेवा की इस गौरवशाली यात्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लेते हैं। आकाशवाणी तवांग, आपकी आवाज, आपकी पहचान। जी हाँ, मैं हूँ आपके रेडियो दोस्त दर्जी डोलमा और तकनीकी सहयोगी न्यूटन बोरा, अशोक बर्मन, हेमंता स्वर्ग्यारी और तानिंग तको के साथ हम लेकर आए हैं हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। तो आइए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम देखते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में पहला फोन किस श्रोता से प्राप्त हुए है। हेलो, नमस्कार।
1: हेलो, तशिदिल्ला मेटो
0: तशिदिल्ला
1: समजी शुरू
0: लेसला जिक इन रंजन खान नुला नंग दोरे ला एचे को देशी इन शेल समजी फुगो निला
1: मन पर समजी शुल्ला मेटो बा
0: लेस मन पर समजी फुगो निला
1: जीना जिक ता दा पर समजी जुर
0: दा पर वाला जिक देशी दम सुनु इन ला समसन गेंचे
1: तो अच्छा नि मेये दिन ला आने ले मुनो ला मेटो
0: लेस लेस देशो स्लेरिंगा इन से थुकते ना समचिते फुदुशुला तो जे छेला
1: ओ थिजेला मेटो मोति
2: हा।

0: हेलो, नमस्कार
1: नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, धेमाजी असम जिला में से बिमल बसुमतारी बोल रहे हैं मैम।
0: अच्छा, विमल बसुमतारी जी, आपका स्वागत है।

0: बताइए आज कौन सी गीत पेश करूं आपके लिए?
1: जी मैम, हमको आप सुना दीजिए दिल की मानता नहीं, ये गाना सुनना चाहता हूँ मैम।
0: दिल है कि मानता नहीं?
1: जी जी जी, ये गाना सुनना चाहता हूँ।
0: जी जी,
1: गाना डिलीट करना चाहता हूँ मैम।
0: हाँ जी,
1: सबसे पहले आपका दिल कर रहेगा और साथी है अमर फाइकोन मुंडा, रमेश पत्र, दिवासी सागरिका, अंकुलिम सुबह, सुनीता मुसलमारी और हितेंद्र दास, जोगिंदर रंगी, कपिल बुरुआ और है सौरभ द्वारा, नीलपल द्वारा और सबको दिल कर रहेगा मैम।
0: अच्छा चलिए, तो मैं आज के लिए आपकी फरमाइश पेश कर रही हूँ और हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: जी।

0: जी हाँ, तो दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हर बुधवार के सुबह 10 बजे जरूर फोन कीजिएगा। हमारा फोन नंबर है 6033914908। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ ही अब आपके रेडियो दोस्त दर्जीडर्मा को तकनीकी सहयोगी न्यूटन बोरा, आशुत बर्मान, हेमंता स्वर्गियारी और तानिक तको के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: श्रोताओं भी आनंद ले रहे थे साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। इसे संचालित तथा प्रस्तुत करता थी दोर्जी ड्रमा। श्रोताओं इसी के साथ ही कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी समाप्त हुआ। श्रोता हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अन्य प्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 7:45 पर सुनेगा प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 7:50 पर आप सुन सकेंगे रीजनल न्यूज। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राज्य मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर सशक्त उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति सियांग और अपर सियांग जिलों में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी SUMP से संबंधित प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट यानी PFR

0: और भ्रामक जानकारी फैलाए जाने की बात कही गई है। मंत्रिमंडल ने यह भी स्पष्ट किया है कि पीएफआर सर्वेक्षण का शांतिपूर्ण संचालन सियांग और अपर सियांग जिलों के निवासियों के साथ लगातार और सार्थक संवाद पर निर्भर करता है। मंत्रिमंडल ने जोर देकर कहा है कि संभावित परियोजना प्रभावित परिवारों यानी पीएएफएस और स्थानीय समुदाय के आवास कल्याण और आकांक्षाएं इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में हमेशा रही है और आगे भी रखी जाएगी। मंत्रिमंडल ने स्थानीय परंपराओं और सामुदायिक हितों का सम्मान करने वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। साथ ही विश्वास व्यक्त किया है कि संवाद के माध्यम से सर्वेक्षण को शांतिपूर्वक ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो सियांग क्षेत्र और पूरे देश के व्यापक हित में होगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर स्थित अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी APSSB के कार्यालय परिसर में नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि APSSB की स्थापना का उद्देश्य ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए पारदर्शी और समान अवसर पर आधारित व्यवस्था तैयार करना था। इससे पहले इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया संबंधित विभाग स्वयं संचालित करते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग अलग विभागों की अपनी जरूरतें और प्रक्रियाएं जरूरी थी, लेकिन विकेंद्रित भर्ती व्यवस्था से प्रक्रियाओं से असंगता पाई गई और निष्पक्षता और बाहरी प्रभावों को लेकर चिंताएं पैदा होने की गुंजाइश रहती थी। उन्होंने कहा कि एक समर्पित भर्ती संस्थान के गठन के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी अभ्यर्थियों का समान अवसर सुनिश्चित हो सके। अरुणाचल प्रदेश की AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी एकोई का पहला 10 दिवसीय AI बूट कैंप और हैकाथॉन आज IIT गुवाहाटी में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य राज्य के कॉलेज विद्यार्थियों, युवाओं और AI में रुचि रखने वाले लोगों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति जागरूकता, क्षमता निर्माण और नवाचार को आगे बढ़ावा देना है। इस बूट कैंप में प्रतिभागियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन प्रोग्रामिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी। इसके लिए विशेषज्ञों के नेतृत्व में सत्र, प्रायोगिक अभ्यास और मेंटरशिप की व्यवस्था भी की गई है। कुल 97 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से चयनित 40 प्रतिभागी इस 10 दिवसीय बूट कैंप और हैकाथॉन में हिस्सा ले रहे हैं। ये कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को की पहल के तहत आयोजित की जा रही है। ये इंडिया AI नीति की पहल है और इसे राज्य के काउंसिल ऑफ IT एंड ई गवर्नेंस, डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इस आयोजन में IIT गुवाहाटी और NIT अरुणाचल प्रदेश सहयोग कर रहे हैं। शिक्षा राज्य मंत्री PD सोना ने आज कहा है कि जिस तरह पुस्तकालय लगातार आधुनिक रूप ले रही है, उसी तरह लाइब्रेरियंस की भूमिका भी अब अधिक व्यापक और गतिशील होती जा रही है। उन्होंने कहा है कि लाइब्रेरियंस की जिम्मेदारी अब केवल पुस्तकों और संग्रहों के प्रबंधन तक सीमित नहीं रह गई है। उनसे डिजिटल पहुंच, सामुदायिक सहभागिता, ज्ञान सेवाओं और आधुनिक पुस्तकालय प्रणालियों को सहयोग देने की भी अपेक्षा की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने ये बात ईटानगर स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में आयोजित 2 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण में लाइब्रेरी ऑटोमेशन और डिजिटल संसाधन, सामुदायिक सहभागिता में लाइब्रेरियंस की भूमिका, सेवा नियम, व्यक्तिगत विकास और मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने इस महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण पहल में योगदान के लिए लाइब्रेरी निदेशालय, रिसोर्स पर्सन सहित सभी प्रतिभागियों की सराहना की। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य देवेश कुमार को अरुणाचल प्रदेश के लिए भाजपा का नया राज्य प्रभारी नियुक्त किया गया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी के प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रायोजित महीने भर चलने वाले वंदे मातरम कार्यक्रम के तहत आज पासीघाट स्थित गति नाटकों में सेवकुरम किनारे बड़े पैमाने पर नदी स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। स्वच्छ नदी स्वच्छ भारत विषय पर आयोजित इस अभियान के दौरान अनुमानित 5.6 टन कचरा नदी किनारे से हटाया गया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: good evening, this is Shobhashachi Bhattacharji with regional news. The state cabinet today passed a resolution approving the constitution of an empowered high-level committee to guide and coordinate the pre-feasibility report, PFO survey and associated activities for the proposed Upper Siang Multipurpose Project SUMP in Siang and Upper Siang districts. The cabinet took note of concerns raised by some sections of people in these districts regarding misinformation and disinformation being spread by certain vested interests and further resolved that PFO's

श्रोताभ्य आपने सुना फिल्म गुंजन सक्सेना से अरिजीत सिंह की आवाज में एक देशभक्ति गीत। इस गीत के गीतकार थे कौसर मुनीर तथा संगीतकार थे अमित द्विवेदी। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, समय रात्रि के ठीक 8 बज चुके हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद पुरानी सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला फरमाइश आनंद लेते हैं आप सबके फरमाइश पर। आप है पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से। मीर अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा।

आफ असम से हितेंद्र दास, आप सबके फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत है आनंद लेते हैं सरस्वती चंद्रा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने तथा संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा आइए आनंद लेते हैं गुप्त फिल्म से उदित नारायण और सुनीता राव की आवाज में। इस गीत के गीतकार है आनंद बख्शी तथा संगीतकार है वीजू शाह और इस गीत की फरमाइश की है मुजफ्फरपुर बिहार से आप है आर्यन राज, रोहित राज और फियूज कुमार। आइए आनंद लेते हैं आप सबके फरमाइश पर यह खूबसूरत गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आयानत लेते हैं आप सबके फरमाइश पर। गांधी चौक बर्मा राजस्थान से आप है बमलेश पनवार, देनी पनवार और मनीष पनवार।

आप सबके फरमाइश पर आयाना लेते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा कर्ज फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल आवाजों में शफरचना आनंद बख्शी के है तथा धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का

श्रोताओं इस समय आप आनंद ले रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को जारी रखते हुए आई आनंद लेते हैं मधुबन कॉलोनी तवांग से राहुल एसबीआई बैंक कॉलोनी तवांग से आफे येशी तेंजिन दहदिन और ताशी सिंह आप सबके फरमाइश पर आनंद लेते हैं फम शतरंज से कुमार सानो और साजना सरगम की युगल आवाजों में समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है आनंद मिलन ने

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए आनंद लेते हैं मंडलिंग तवांग से तेंजिन टोलकर श्रीकृपा के फरमाइश पर फिल्म चांदवी का चांद से मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत के गीतकार है शकील बलियानी तथा संगीत दिया है रवि ने।

श्रोताओं, अब आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के फूल और फिल्म का नाम लिखना ना भूले, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। श्रोताओं, आइए आनंद लेते हैं फिल्म फकीरा से लता मंगेशकर की आवाज में एक गीत। इस गीत के गीतकार एवं संगीतकार है रविंद्र जैन।

आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोता हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पदों में यानी रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 8:45 पर आप सुन सकेंगे समाचार संध्या तथा ठीक रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे।

0: नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में मैं आप सभी का श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। मैं हूं प्रशांत कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विशेष शुक्ला।
1: नमस्कार प्रशांत, और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगी हर मैच की अपडेट, हर मैदान का हाल, वो भी सब कुछ अधिक विस्तार के साथ।
0: तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का ये सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस।

0: पर एशियाई खेलों के भारोत्तोलन में 28 साल का सूखा खत्म, मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता।
1: रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई, भारत के लिए पदक सुनिश्चित।
0: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया, सेमीफाइनल मुकाबले में चीन से मिली हार।
1: भवतेक सिंह गिल, अनंतजीत सिंह नारुका और मेराज अहमद खान की पुरुष स्कीट में कांस्य पदक जीता।
0: वहीं जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए भारत को पहला पदक दिलाया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भारोत्तोलन से, जहां मीराबाई चानू ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के नाम एक पदक कर दिया है। एशियाई खेलों में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने 28 साल का सूखा समाप्त करते हुए रजत पदक जीत लिया है। ये भारत का भारोत्तोलन में 1998 के बाद पहला पदक है।
2: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद काफी, इससे पहले भी मैं काफी इंजरी हुई थी, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है एक प्लेयर्स के बाद। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
3: मीराबाई ने 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 198 किलोग्राम का भार उठाते हुए एशियन गेम्स में अपना पहला मेडल जीता। पिछले संस्करण में चौथे स्थान पर रही मीराबाई ने स्नैच राउंड के अपने पहले प्रयास में 83 किलोग्राम का वजन उठाया। इसके बाद दूसरे प्रयास में वह 85 किलोग्राम का भार उठाने में कामयाब रही। तीसरे प्रयास में मीराबाई ने 87 किलोग्राम वजन उठाया। वहीं क्लीन एंड जर्क राउंड के पहले प्रयास में 107 किलो का भार उठाया। वहीं दूसरी कोशिश में वह 111 किलो का वजन उठाने में भी सफल रही। वहीं नॉर्थ कोरिया की खिलाड़ी री सोंगम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 1998 में कर्णम मलेश्वरी ने भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में आखिरी मेडल जीता था। इसके बाद से कोई भी खिलाड़ी एशियन गेम्स में देश के लिए मेडल नहीं ला सका था। मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स में अपने मेडल का सूखा भी खत्म कर दिया है। मीराबाई से पहले ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल जीत चुकी हैं। फरहत नाज, स्पोर्ट्स कैन।
1: बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा प्रशांत। मीराबाई ने ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेलों में और अन्य कई प्रतियोगिताओं में पदक जीते थे, लेकिन अपने करियर का पहला एशियन गेम्स मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया।
2: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद काफी, इससे पहले भी मैं काफी इंजरी हुई थी, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है एक प्लेयर्स के बाद। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
0: बिल्कुल विशेष, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब बात वुशु पर करते हैं विशेष।
1: जी हाँ प्रशांत, और भारत की रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु के सांडा के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में रोशिबीना ने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंगत्यास को 2-0 से हराया। अब रोशिबीना कल चीन की झांग शियाओ से स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। सुनते हैं कैसा रहा उनका सफर।
4: रोशिबीना ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया है। रोशिबीना ने प्री क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश की शिखा खातून को हराया था। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मकाऊ की चू मैन सिन को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। अब लगातार 3 मुकाबले जीतने के बाद वह सीधे गोल्ड मेडल के मुकाबले में पहुंच गई हैं। रोशिबीना के लिए यह एशियन गेम्स में लगातार तीसरा पदक होगा। उन्होंने 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में कांस्य और 2023 के हांगझोऊ एशियन गेम्स में रजत पदक जीता था। रोशिबीना की नजर अब अपने पहले एशियन गेम्स गोल्ड पर होगी। अगर वह फाइनल जीतती है तो वुशु में भारत के लिए एशियन गेम्स में यह पहला गोल्ड मेडल होगा। वहीं पुरुष वर्ग की बात करें तो 56 किलोग्राम वर्ग में भारत के आर्यन को क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के साइदुल्लो अब्दू राशितोव से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा और भारत का अभियान इस वर्ग में समाप्त हो गया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: बेहतरीन प्रदर्शन किया है रोशिबीना ने आज सेमीफाइनल में, और कल स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेगी। सभी प्रशंसकों की निगाहें उनका मुकाबला जो चीन की झांग शियाओ से है उस पर होगा, जहां सबकी उम्मीदें उन पर टिकी होगी कि वे स्वर्ण पदक जीतकर भारत को एक और पदक दिलाए। बैडमिंटन कोर्ट की ओर, एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज चीन

0: के खिलाफ भारत को 1-3 से हार का सामना करना पड़ा।
1: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में कड़ा मुकाबला किया, लेकिन उन्हें जीत में तब्दील करने में नाकामयाब रहे। इस हार के साथ ही भारत का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया। यह दूसरा मौका है जब भारत ने एशियन गेम्स में बैडमिंटन में पोडियम पर जगह बनाई है। मुकाबले की शुरुआत में लक्ष्य सेन पूर्व विश्व चैंपियन शी यूकी से 16-12, 18-21 से हार गए। इसके बाद सात्विक और चिराग ने लियांग वेकेंग और वांग चांग के खिलाफ 21-11, 22-20 से जीत हासिल कर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। तीसरे गेम में आयुष शेट्टी को ली शिफेंग से 19-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा। चौथे और निर्णायक मुकाबले में हे जी टिंग और लियु ई ने भारतीय जोड़ी एम आर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन पर 21-16, 17-21, 21-9 से जीत दर्ज की। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैम।
0: कांस्य पदक जीत लिया है भारतीय टीम ने, बेहतरीन प्रदर्शन किया पूरे टूर्नामेंट में। आज किन खिलाड़ियों ने कैसा किया प्रदर्शन विशेष?
2: प्रशांत, अगर आज के प्रदर्शन की बात करें तो लक्ष्य सेन ने पहला मुकाबला खेला जहां उनको हार का सामना करना पड़ा प्रतिद्वंदी खिलाड़ी से, लेकिन उसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने भारत को वापसी कराई मुकाबले में, लेकिन उसके बाद आयुष शेट्टी और एम आर अर्जुन और हमसा करुणन की जोड़ी जो है वो हार गई, जिसके कारण से भारत का सफर जो है वो खत्म हो गया।
0: भारत का बैडमिंटन में सफर जरूर खत्म हो गया, लेकिन एक पदक उन्होंने देश के नाम कर दिया है।
2: बात करते हैं स्कीट की। भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। भवतेक सिंह गिल, अनंतजीत सिंह नारुका और मेहराज अहमद खान की तिकड़ी ने यह पदक देश के लिए जीता है। भारत की स्कीट टीम ने फाइनल में कुल 346 का स्कोर करते हुए कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। कुवैत ने 348 के स्कोर के साथ रजत, जबकि कतर ने 353 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता।
0: वहीं विशेष, अनंतजीत ने इस स्पर्धा के व्यक्तिगत फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले भारत की महिला स्की टीम ने भी देश को इसी स्पर्धा में कांस्य पदक दिलाया था। परिणाज धालीवाल, रजिया ढिल्लो और माहेश्वरी चौहान ने कुल 331 का स्कोर करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया।
2: जी हां प्रशांत, वहीं मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत इवेंट में मेडल लाने से चूक गई। मनु 181.1 के स्कोर के साथ फाइनल मुकाबले में पांचवें स्थान पर रही। मनु अपने प्रदर्शन से खुद निराश नजर आई। इसके साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल के टीम इवेंट में भी मनु, ईशा और सुरुचि की तिकड़ी मेडल जीतने से मामूली अंतर से चूक गई। भारतीय महिला टीम चौथे स्थान पर रही।
0: बिल्कुल, मनु भाकर से सभी को उम्मीदें थी, हालांकि बहुत ही कम अंतर से वो पदक जीतने से रह गई। और अब बात करते हैं सॉफ्ट टेनिस पर। सॉफ्ट टेनिस में जय मीणा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों के सॉफ्ट टेनिस में भारत के लिए पहला पदक अपने नाम किया। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें जापान के ताकुया कुरुसोका से 2-4 से हार का सामना करना पड़ा।
3: सेमीफाइनल में हार के बावजूद जय मीणा कांस्य पदक अपने नाम करने में सफल रहे। जय ने क्वार्टर फाइनल में शेरविन नोगोइट के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए एशियन गेम्स के सॉफ्ट टेनिस में भारत का पहला मेडल पक्का किया था। सेमीफाइनल में जय कोरुसाका से हार गए और ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल के साथ अपना सफर समाप्त किया। जय के सफर की बात करें तो 14 साल की उम्र में ही उन्होंने जापान में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। मीणा ने 2022 में गुजरात में हुए 36वें नेशनल गेम्स में पुरुष सिंगल्स वर्ग का गोल्ड मेडल जीतकर अपनी पहचान बनाई। इसके बाद 2025 में वे पुरुष सिंगल्स के नेशनल चैंपियन बने। एशियन गेम्स 2022 में जय पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। 2024 में मीणा और आध्या तिवारी की जोड़ी ने वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारत को इस टूर्नामेंट का पहला मेडल दिलाकर इतिहास रचा था। इसके बाद 2025 में उन्होंने एशियन सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में भी शानदार प्रदर्शन किया था। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल तक पहुंचकर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और इस प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने। जय मीणा का तीसरा एशियाई खेल है। इससे पहले भी वे जकार्ता एशियन गेम्स 2018 और हांगझोउ एशियन गेम्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: विशेष, अलग अलग गेम में जो कि इतने प्रचलित नहीं उसमें भी पदक आ रहे हैं। सॉफ्ट टेनिस हो, सेपक टैक्रो जैसे नए नए जो उभरते खेल हैं उसमें भी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और देश के लिए पदक भी ला रहा है।
2: प्रशांत, और अब बात करते हैं स्क्वॉश की, जहां भारत ने शानदार आगाज करते हुए राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अभय सिंह, वीर चोटरानी और तन्वी

0: खन्ना ने अपने शुरुआती मुकाबले जीत लिए हैं। इन खिलाड़ियों में दूसरे सीट अभय का प्रदर्शन सबसे दमदार रहा, जिन्होंने थाईलैंड के अर्काडेक अकारा हिरुन्या को 11-1, 11-2, 11-2 से हराया।
1: विशेष अगर वीर चोटरानी की भी बात करें तो वो भी बिना कोई गेम हारे अगले दौर में पहुंचे हैं। हालांकि श्रीलंका के शामिल वकील के खिलाफ उन्हें शुरुआती दौर में कड़ी टक्कर मिली, लेकिन आखिरकार भारतीय खिलाड़ी ने राउंड ऑफ 32 में 11-8, 11-3, 11-3 से जीत दर्ज की। तन्वी खन्ना ने साउथ कोरिया की दामी किम को 11-5, 11-7, 11-5 से पराजित किया।
0: और प्रशांत, इन नतीजों के साथ भारत के तीन खिलाड़ी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं। अब सभी की निगाहें अनाहत सिंह पर होंगी, जिनका अभियान कल से शुरू होगा। 17वीं रैंकिंग वाली भारत की शीर्ष खिलाड़ी अनाहत अपने शुरुआती मैच में सिंगापुर की ओ योंग वाई लिन का सामना करेंगी।
1: और अब बात मुक्केबाजी पर। भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। अपने पहले एशियन गेम्स में अंकुश ने आज बहरीन के हमसा वोगेल को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय बॉक्सर का मुकाबला तजाकिस्तान के नेक्रूज सलीमोव से होगा।
0: 21 वर्षीय बॉक्सर ने राउंड ऑफ 32 में ब्रुनोई के वोगोल पर 3-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद अगले दौर में वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरे। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट पंघाल ने पिछले साल वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में रजत पदक जीता था और अब वे नागोया में मेडल पक्का करने से बस एक जीत दूर है। प्रशांत,
1: लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है मुक्केबाजों का। हाल के दिनों में भी उन्होंने कई पदक देश के नाम किए थे और इस प्रतियोगिता में भी सभी प्रशंसकों की निगाहें उन पर होगी कि वे पदक जीते और देश का मान बढ़ाएं। और अब बात हॉकी पर। भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज पूल बी के मैच में भारत ने थाईलैंड को 20-1 से हराया। इस जीत के साथ ही भारत का टूर्नामेंट में अजेय रिकॉर्ड बरकरार है और टीम पूल स्टैंडिंग में मजबूती से शीर्ष पर बनी हुई है। ये भारत की लगातार तीसरी जीत है। विशेष, भारत का अगला मुकाबला शुक्रवार को जापान से होगा।
0: और इससे पहले प्रशांत, भारतीय टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 और फिर इंडोनेशिया को 17-1 के बड़े अंतर से शिकस्त दी। थाईलैंड के खिलाफ दीपिका का प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने मैच में कुल 9 गोल दागे। फॉरवर्ड और ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट दीपिका ने अपने सभी 9 गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए। नवनीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 गोल दागे, जबकि ऋतुजा पिसल ने हैट्रिक पूरी की। भारत की नजर होंगजो एशियन गेम्स में जीते गए ब्रॉन्ज मेडल से बेहतर प्रदर्शन करने पर है। टीम 1982 के बाद महिला हॉकी में अपना पहला एशियाई खेलों का गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश कर रही है।
1: और अब बात क्रिकेट पर। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा आईसीसी वुमेन्स टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में चौथे पायदान पर पहुंच गई है। शेफाली वर्मा ने एशियन गेम्स में जापान के खिलाफ नाबाद 40 रन की पारी खेली थी। सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाए थे और फाइनल मैच में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 48 रन की पारी खेली थी। और अब भारतीय पुरुष टीम भी तैयार है एशियन गेम्स में पदक लाने के लिए। महिलाओं ने स्वर्ण पदक, पहला पदक जिताया है, देश को दिया है। और टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं विशेष, जो भारत को पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे?
0: प्रशांत, भारतीय टीम अभी टी20 में विश्व चैंपियन है और अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी पर बहुत दारोमदार होगा कि वो भारतीय टीम को बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिलाएं। और उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल, शिवम दुबे जैसे कई खिलाड़ी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाकर भारत की स्वर्ण पदक की उम्मीदों को पक्का करने के लिए खेले।
1: बिल्कुल, और ऐसा ही कुछ उम्मीद होगा प्रशंसकों को भी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव में स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और विशेष को अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से

अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से।

0: राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
1: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
3: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक

0: भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल इनोवेशन मिशन की।
1: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
2: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
1: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
3: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज नहीं बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
1: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: IMD ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज 2 महिलाओं समेत 3 शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले 2 दशकों से अधिक समय से माओवादी

0: इस आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रूपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
1: एशियाई खेलों में रोशोबीना देवी वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
2: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मैं काफी इंजुरी हुई थी, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
1: वहीं जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने की अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India reiterates its interests and concerns with the United States regarding act imposing tariffs on countries buying Russian oil and gas. New Delhi rejects Organization of Islamic Cooperation's Jammu and Kashmir reference, says it has nothing to do with internal matters of India. Defence Ministry signs over 810 crore rupees contract with Bharat Dynamics Limited for 160 satellite smart anti-airfield weapons for Indian Air Force. BJP announces party in-charges and co-in-charges for all 36 states and union territories. Deep depression over Bay of Bengal intensifies. Heavy rains lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games, Indian men's badminton team settle for bronze, taking overall tally to 12 medals, including one gold. India today reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session this evening and raised concerns.